0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचे सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: टाइम
3: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका पांच सोलु कुंभू

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो
3: डिजिटल कलरला तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुतु नगरपालिका 5 सोलु कुम्बु

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: एएम
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंभ

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखरी हुंडा को मिलन क्षेत्रमा।
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रवृत्ति उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भर पर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यवसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुङ्गा र खोटाङको दिक्तन बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनुका साथै सर्भिसिङ सेवा
3: एक्सचेन्ज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्भिस सेवा निशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिङ गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्भिस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ ओखलढुङ्गा।
2: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880022 र 9842880300।

का साथ ही अर्डर अनुसार का गहना तपाईले खोजे र भनेकै समय भित्र बनाइन्छ। मंदिर में चढ़ाने भेटी प्रचलित गहना ढुंगी बुलाकी मालदारी तिलहरी लगाय का गर गहना नेट को भाव में बनाइन्छ। राशि अनुसार को पत्थर पनि पाइन्छ। प्रोपाइटर विधान रहपाल संपर्क नंबर 9742848 4057 र 9867 5300

0: বন্ধু, তুমি তো বিদেশ মানে লাগে রে। হো দিদি, টিকা দেখা গরম শুরু করার কথা সেখানে চলে না। অন্য তো ঘর চালানো সাহারে ঘাড়ে গিয়ে বিদেশ গায়ে বসে তো এসে দু চার পয়সা কমে হয়েছে কি ভুলে না দিদি। বিদেশ সন্দেহ না কাহা রাম্রো হুন্ছ রা মঞ্জু। অস্তি ভর্খর আন্দাহাদের কাকাকে ছোড়ি অঞ্জলীলাই বিদেশ গয়েকে এক হপ্তা নাই উদ্ধার গরের ল্যায়েকে থাসান তিনলাই। তিনি পনি বিচার গরা এই বিচার গরা জানানে ভয়ে বুঝের মাত্র যাই খাই কে জানি জানি দিদি।
1: रोजगारीको लागि उच्च शिक्षाको लागि र विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जाँदा पनि भेट बिखरमा पर्न सकिने जोखिम हुन सक्छ। यस्ता जोखिमहरू आउन नदिन सतर्क रहनु र बुझेर मात्र विदेश जाउनु।
2: नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता। यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19, समुद्र साक्य 9861-83-35-34, टेलिफोन 0385-20-43। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई सम मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोनु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गारमा चोर बौद्ध सुलुखु।
3: बाबा, मलाई आज स्कुल जाने मन छैन, आज जाँदिन नि है।
4: के भयो सन्चो भयो?
3: होइन, यतिकै जाने मन लागेन।
4: यतिकै पनि हुन्छ?
3: मैले साइन्सको कन्ठे गर्न सकिनँ, सरले हुन्छ।
4: ए, कुरा त्यस्तो थियो, हेर म पनि तिमीसँगै जान्छु। नमस्ते म्याडम, म रिना गुरुङ।
0: नमस्ते, कति टाइमले पाल्नुभयो?
4: आज रिनाले स्कुल जान्न भन्यो, साइन्सको कन्ठ गर्न सकिन अरे, सरले पिट्नुहुन्छ भन्दै थिए।
0: ओहो, हो र हजुर आएर राम्रो गर्नुभयो। विद्यार्थीलाई कुट्न तर्साउन कहीँ पाइन्छ र विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय गरी एक वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना हुन्छ। म साइन्सको सरलाई सम्झाउँछु, रिना तिमी क्लासमा जाऊ त, सरले केही गर्नुहुन्छ।

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिवसको 1 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुम्बु
2: आदरणीय श्रोताबृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सूर्य एफएम सूर्य एफएम अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त गरौ, सुरक्षित भविष्य निर्माण गरौ, मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिने र दिने गरौ, मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने गरौ, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ, जलवायु परिवर्तन का असर घटाउन सामूहिक प्रयास गरौ, वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ, ऊर्जा बचत र स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ, वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ, वातावरण संरक्षण करौ, जीवन रक्षा करौ।
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन अदली सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन में नगरी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कोई गुनासो आएगा अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
0: आर्थिक वर्ष 2084 का लागि प्रवेश पत्र संचालन गरिने आयोजना कार्यक्रम को लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्ध में कोशी प्रदेश योजना आयोग
2: आयोजना को वर्गीकरण आधार तथा मापदंड निर्धारण र आयोजना दंड व्यवस्थापन कार्यविधि 2082 बन्दछ स्थानीय तह र प्रदेश कार्यालय आर्थिक वर्ष 2084 में कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यक्रम के सम्बन्ध में इस आयोग मिति 2082 साल चैत्र 9 गते आयोजना वनसूचना प्रमाण मार्फत प्रस्ताव आह्वान भएको हुनाले 2083 साल वैशाख 5 गते घटना प्रणाली को प्रयोग मार्फत आयोजना प्रस्ताव बना हुआ कृषि प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई जानकारी को लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। साथ ही आयोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा स्थानीय नागरिकले सम्बन्धित स्थानीय तह र संस्थाको कार्यक्षेत्र रहेको स्थानीय तह तथा आयोजनाको सम्बन्ध कार्यक्षेत्रमा रहेको प्रवेश कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गरिन्छ। प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना विस्तृत आयोग वेबसाइट ppc.kc.gov.np हेन सभी में एसएस सूचना मार्फत अनुरोध कर
1: कोशी प्रदेश सरकार प्रदेश योजना आयोग विराटनगर नेपाल
0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना
2: अदली सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कसई को प्रलोभन में नगरी आपको सेवा लीन हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कोई गुनासो आएगा अधिकार कार्यालय प्रमुख सुनवाई संपर्क राख सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराटनगर
3: I am

0: वर्ल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर गर्न मदद गर्दै आएको छ। न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासु वर्ल्ड कॉलेज साधन सुसीवादी संपर्क नंबर 9803362382 9803362387
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मातृभूत कोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मातृभूत कोशी को समृद्धि मातृभूत कोशी गांव पालिका सोलखुंड के सहकारी में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्तों बुधवार सांस 7:30 देखि 8 बजे समय शुरू एफएम 101.2 MHz ऑनलाइन शुरू एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ। कहाँ पुग्यो कहाँ पुगेन जनप्रतिनिधि को नजर विनियोजित बजेट को काम र प्रभावकारिता नागरिक को गुनासो र सुनवाई समग्र स्थानीय तह को विकास र सिद्धि नेछा सोलन गांव पालिका सोलखुम्बु को सहकार्य में उत्पादित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो नेछा सोलन।

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचित सूर्य फिल्म स्टूडियो टाइम
2: 3 PM न्यूज को 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलुखुम्बु
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो
1: राष्ट्र को शान किसान
2: अ कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस।

0: स्टार कोलोनिया तथा सोलामाई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस सुनोदित कुंडू नगर पालिक पांच सलेरी सुनखुम्बू विगत देखने ग्राहक विश्वास जीती आई को न्यू स्टार कोलोनिया तथा सोलामाई ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस थप सेवा का साथ में सब हमारा सेवा भोज संबंधी संपूर्ण काम किताब कैलेंडर ब्रोशर बिल मीटर पैड रजिस्टर विवाह कार्ड फ्लेक्स प्रिंट बोर्डिंग बोर्ड फोटो जस्ट प्रिंट गाड़ी तथा बाइक को नंबर प्लेट छपाई साथ ही स्टेशनरी का सामान होलसेल मूल्य में पाइन दिव्या कंपनी को एलईडी बल्ब पावर सकेट पैनल लाइट ट्यूब लाइट रिवर कंपनी को सब खाल का तार पाइन सीवी कंपनी का संपूर्ण सामान कंपनी के मूल्य बिक्री वितरण गरिदै आएको छ सीजी कंपनी को फ्रिज डीप फ्रिज वाशिंग मशीन माइक्रोवन मुहाउने गीजर गैस चूलो भैक्यूम तथा किचन को संपूर्ण सामान उपलब्ध छ एलईडी टीवी कंप्यूटर लैपटप कलर प्रिंटर फोटोकपी मशीन झाल ढोका में लगने मोटो तथा पातलो रंगीन सीसा फोटो फ्रेम होलसेल मूल्य में बिक्री वितरण गरिन्छ हार्डवेयर का संपूर्ण सामान काटी कब्जा छेस्किनी तालछा वाल मिक्सर मोनी सावर बेसिन धारा कमोट पेन सेट पीवीसी पाइप सीपीवीसी पाइप पाइनु का साथ ही फ्रीज डीप फ्रीज वाशिंग मेसिन कंपनी के मूल्य में पाइन्स ये सब मरम्मत गैस वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग साथ ही बाइक को ट्यांकी कलर कर समीरी बस पार्क में रहकर न्यू स्टार तथा ज्वालामय ऑटो वर्कशॉप गैस सिलिंडर गैस चूलो साथ ही सब खाल का बाइक तथा स्कूटर मरम्मत कर पार पुर्जा मोबिल हेलमेट रेनकोट होलसेल मूल्य में बिक्री कर नया तथा रिकंडीशन बाइक समेत अर्डर अनुसार उपलब्ध कराई संपर्क नंबर 0385203089 0385203060 मोबाइल नंबर 9860324426 र 9841909250 न्यू स्टार कोलोनिया तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस समिरी सुनखुम्बु
1: हाम्रो के दोष सर पक्रिनु भएको सर
2: बाल विवाह गर्नु अपराध हो भन्ने थाहा थिएन तपाईँहरूलाई के दोष छ भनेर हुन्छ
3: हामी त जन्ती गएका त हौ सर
2: त्यही त कुरो बिग्रियो बाल विवाह भएको हुन लागेको कुरा त देखेपछि रोक्नु पर्ने हो नि त उल्टै जन्ती जाने भोज खाने अनि पक्राउ परिन्न त
1: तिनकै बाबुआमालाई पक्रिनु न सर हामीलाई छाड्दिनु
2: तिनका बाबामा पक्राउ परिसक्यो ती त अब 3 महिना जेल बस्छन्
3: तिनलाई पक्रिहाल्नु भएछ अब यसरी बाल विवाह गर्न दिनु सर गाउँ घरमा एक पटकलाई छोडिदिनु सर
2: अब कानूनले त्यसो भन्दैन बाल विवाह गराउने लौनीदेखि जन्तीसम्मलाई 1 महिना कैद हुन्छ भनेको छ अब यो थुन्ने र छन्ने काम पुलिसको होइन अदालतले गर्छ चुप लाएर बस्नुहोस्
0: बाल विवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी नेपालको जनहितमा जारी सन्देश

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 PM रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुम्बू

sea, obviamente tenemos que las compañías, si tienen un más compañero, tú puedes más compañero también desde ahí. Ahora chito el mar, después el nivel para así, ¿no? Naki, Bardia, Kailali, Kansan Kurma, Nako, Nak, después el nivel que mencionan pasado, no hay que ver el sábado, ni ver para la casa. Es un gusto, ¿no? Pero, Sarkari, pues yo creo que yo mencioné, yo creo que yo mencioné, yo creo que yo mencioné, yo creo que yo mencioné, yo creo que yo mencioné, yo creo que जंगल फाड़ना मुझे मनी कराया तो पहले जंगल बड़े फाड़ी हो और उस जंगल के संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय नीति में बने जंगल संकट आए थे और सरकार लोगों ने जो जगह जो उपलब्ध कराने के बारे में और पहले चित्र में मुझे अब परिणाम से शुरू में लोग एक परिवार लाई सोरा बिगा समझ में आ जाए उस जगह कम हो रही है सोरा बड़ा जंगल बंदे बंदे आ रहा पछि चाहिँ एक बिघा दिन पनि मुस्किल पर्यो होइन कैलालीमा म टिकापुरमा त काम गर्थेँ टिकापुरमा सुरुमा चार बिघा थियो पछि दुई बिघा दुईबाट चाहिँ भएर अनि दस कट्टाबाट पछि एक घरमा नै सिमित गर्नु भयो एक घरमा बसेर के गर्नु थियो त्यो एउटा थारू परिवार नै घरमा बसेर के गर्न सकेन भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ खेती गर्नुको लागि पर्याप्त जमिन दिनु अब त्यो जमिन

0: सुनता मेरे कपड़ा प्याकिंग कर दू तो श्याम जी को मिसेस लाई कैंसर उपचार करा इंडिया संगे लिएर जान पड़े हो
1: ए हो रही सुन अब कैंसर को उपचार सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट भरतपुर में नहीं हो पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएंट ट्यूबिंग 60 काउंस र हाइपर आर्क लगायत का अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग करी मस्तिष्क में बने ट्यूमर चक्षु को कैंसर स्तन कैंसर घाटी तथा टाउको संबंधी कैंसर पेट तथा कलेजो संबंधी कैंसर पाठेघर को मुख गर्भाशय तथा मूत्राशय संबंधी कैंसर तथा अन्य कैंसर को उपचार हुन्छ। कैंसर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएशन को माध्यम पूर्ण रूप में निको होने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पताल की सेवा शुल्क में उपचार होने का साथ ही नेपाल सरकार प्रदान गरिने कैंसर पीड़ितहरूका लागि 1,00,000 सम्म को छूट को व्यवस्था पनि छ।
0: यस्तो सुविधा रहेछ। म अब कैंसर उपचार गराउन सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट मा नै लिएर जान्छु। कैंसर विरुद्ध आन्सर हो कि सीएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट।
2: फोन 0554-94-33-4-93-555।
3: कृषि मन्त्र नाग सिंह।
2: माछाका भुरा धुवानी गर्दा पानीको तापक्रम वर्णन नदिन जुटको बोरा भिजाएर छोप्नुहोस्। सकेसम्म बिहान या साँझ पखको समय पार्

0: Raio Rádio, Solu FM.
1: Solu FM, 101.2 MHz. उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान.
2: Time check.
1: Studio time. 10 p.m.
2: रात को 10 बजे.
1: Time check को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुर्गुन नगर पालिका 5 सोलु.